सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम जी बोल सत्यनाम हरि हरि हरि हरि हरि हरि जी बोल हरि हरि हरि हरि हरि जी बोल।

सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम जी बोल सत्यनाम हरि हरि हरि हरि हरि हरि जी बोल हरि हरि बोल हरि हरि हरि हरि हरि हरि जी बोलो नित्य नित्य।

गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल।

बिन गुण काम ना आवई टह टेरी तनखे मेरे मन लै लाहा कर जाहे। गुरमुख नाम सलाही है हमें निवरी पाहे राहो। सुन सुन गंडन गंडी है लिख पढ़ बुझै पार तृष्णा अहनस अगली हमें रोग बेकार। ओह वे प्रवाहो अतोलवा गुरमत कीमत सार लक्ष्य आण पजे करी लक्ष्यों प्रीत मिलाप बिन संगत साधना त्रापिया बिन नावै दुख संताप। हर जप जी अरे छुट्टिया गुरमुख जी नै आप तन मन गुर पै वेचिया मन दी असर नाल त्रिपवन खोज टंडोलिया गुरमुख खोज निहाल सतगुर मेल मिलाया नानक सो प्रभ नाल।

अंतर की गत जानिए गुरमिलिए संको तार, मोया जित कर जाइए तित जीवंदिया मरमार। अनहद शब्द सुहावणे पाइए गुर विचार, अनहद बाणी पाइए तैहो मैं होए बिनास। सतगुर सेवे अपना हो सतगुर बाणे तास, खड़ दरगह पै

मन मानक निर्मोल है, राम नाम पत पाए, मिल सत संगत हर पाई है, गुरमुख हर लिव लाए, आप गया सुख पाया, मिल सलल है सलल समाए। जिन हर हर नाम ना चेतियो सो अवगुण आवै जाए, जे सतगुर पुरख ना भेटियो सो पौजल पचै पचाए। एहो मानक जियो निर्मोल है, इउ कौडी बदलै जाए, जिन्ना सतगुर रस मिलै से पूरे पुरख सुजान। गुर मिल पौजल लंगी है, दरगह पत प्रवान, नानक ते मुख उजले तुन उपजै शब्द निशान। श्री राग महला पहला, वणज करो वणजारियो वखर लिहो समाल, तैसी वस्त विसाही है जैसी निभ नाल। अगे साहो सुजान है लैसी वस्त समाल, पाई रे राम कहो चितलाए, हर जस वखर लै चलो सहो देखे पति आए। रहाओ जिन्ना रास ना सच है, क्यों तिन्ना सुख होए, खोटे वणज वणजे है मन तन खोटा होए, फाही फाथे मिर्ग ज्यो दुख कणो नितरोए, खोटे पोते ना पवै तिन हर गुर दर्श ना होए, खोटे जात ना पत है खोटना सी जिस कोए, खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए, नानक मन समझाई है गुर कै शब्द सलाह, राम नाम रंग रतिया पारना परम तिनाहा, हर जप लाहा अगला निरपव हर मन माहा। श्री राग महला पहला, कर दूजा तन जोबन अर फुलड़ा, नाठी अड़े दिन चार, पबन केरे पत ज्यो ढल टुल जुम्मन हार, रंग मान लै प्यारिया जां जो

जेबो तेरा पड़िया होवह को रह न परिय पाई सोई काजी जिन आप तजिया एक नाम की आया दारो है पी होसी जाय ना जासी सच्चा सृजनहारो पांच वक्त निवाज गुजारै पढ़ै कतेब पुराणा नानक आखै गुर सदेई रहयो पीणा खाणा। श्री राग महला पहला कर चौथा एक सवान दो स्वानी नाल पलके पौकै सदा बयाल कूड़ छुरा मुठा मुरदार तानक रूप रहा करतार मैं पत की पंदना करनी की कार हौ बिगड़ै रूप रहा बिकराल तेरा एक नाम तारे संसार मैं एहा आस एहो आधार रहाओ मुख निंदा आखा दिन रात पर कर जो ही नी सनात काम क्रोतन वसै चंडाल तानक रूप रहा करतार फाही सुरतम लुकी वेस हौ ठगवाड़ा ठगी देस खरा स्याणा बहुत।

मैं मछली कैसे अंत लहा, जह जह देखा तह तह तू है, तुझ ते निकसी फूट मरा। ना जाना मैं ओ ना जाना जाली, जा दुख लागे ता तुझे समाली। रहाओ तू भरपूर जान्या मैं दूर, जो कश करी सो